सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के आश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बातें करेंगे आज मत्स्य पालन और उनके रोगों से संबंधित निदान के बारे में। पूरे विश्व में मत्स्य पालन के दौरान मछलियों का रोगग्रस्त होना एक बड़ी समस्या है। गहन मत्स्य पालन में जहां बीज की संचयन दर अधिक होती है, वहां मछलियों में बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। सामान्यतः मत्स्य रोग किसी रोग जनक के कारण ही होते हैं। इसमें परजीवी कवक जनित जीवाणु एवं विषाणु जनित रोग है। इसके अतिरिक्त कुपोषण भी एक कारण हो सकता है। मछलियों के बीमारियों के सामान्य लक्षण हैं बेचैनी, असामान्य तरीके से विचरण, मछलियों का कूदना, जल के ऊपरी सतह पर तैरना, कठोर सतह पर शरीर को घिसना, समूह में नहीं रहना आदि। रोगजनक एक्थियोपिथ्रीरियस मल्टीफिलिस की प्रजातियां हैं। शरीर एवं गलफड़ों के ऊपर चित्तीदार सफ़ेद धब्बों का हो जाना ये लक्षण बताता है। मछली में पोखर या तालाब के किनारे पर शरीर को रगड़ना, मछलियों का भोजन में कम रुचि, सुस्त रहना, ये सारे लक्षण हैं मछलियों के, जिसे जाना जा सकता है कि ये मछली जो है रोगग्रस्त हो गए हैं। नए परजीवी तालाब की मछलियों पर चिपक कर उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। शरीर या गलफड़ों पर चिपक कर लाल रक्त कणिकाओं को खाते हैं। मछलियों में रक्त की कमी हो जाती है, त्वचा, पंखों एवं गलफड़ों के ऊपर पेन के आकार के लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। संक्रमित मछलियों का रंग अधिक काला होता है। त्वचा एवं गलफड़ों से लसलसे द्रव्य का स्राव होने लगता है। बीमार मछलियों का झुंड से अलग होकर अधिकतर सतह पर एवं किनारों पर चले जाना भी एक मछलियों का कारण होता है। तालाब में मछलियों का अधिक संचयन दर, भोजन की कमी एवं कीचड़ आदि कार्बनिक पदार्थों का जमाव ये कारण हो सकते हैं रोग के लिए। निदान है इसका कि 500 से 1000 ppm पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल में 1 से 2 मिनट का ड्रिप ट्रीटमेंट आप कर दें। 2 से 3 ppm पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में ट्रीटमेंट भी है और 2 से 3% नमक के घोल में का स्नान भी करा सकते हैं।

हिरगेलियस की प्रजातियां हैं, छोटे छोटे जो मछलियाँ होते हैं, अनेक तरह की प्रजातियाँ इसमें होते हैं, छोटे छोटे जो उपसंख्यक जीवें सामान्य सफ़ेद रंग की मछलियों पर चिपके रहते हैं, जो देखने में जंतु लवक जैसे दिखते हैं। ये जानकारी आपको रखना है किसान भाई। परजीवी के शरीर में पीछे एक सफ़ेद रंग की अंडे की थैली का भी हो जाना कारण बनता है। मछलियों के ऊपर चिपक कर अथवा पुनः स्थापना द्वारा क्वारंटाइन में लापरवाही द्वारा अंडों को पुनः संक्रमण संरक्षण के लिए यह सब तरीके हैं। और रोग जो है शीत जल की मछलियों में मुख्यतः इन्फेक्शन, पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, IHN वायरस, हिमोजेरिक सेप्टिसीमिया, एपिज्यूरिक आदि जो रोग होते हैं ये मछलियों में पाए जाते हैं। विषाणुजनित रोग में प्रायः सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। बीमार मछली प्रायः गोलाकार चक्कर लगाते हुए पाई जा सकती है। तो ये सारे लक्षण अगर आपको देखे तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारे तालाब में है, जलाशय में जो हमने मछलियाँ पाला है, वो रोग से ग्रसित है। और तत्काल आप जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर इसके अपनी दान पा सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। तो किसान भाई, ये तो हो गई आज के लिए खेती की बातें कार्यक्रम। आज्ञा दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस खान FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं हमारा आज का चिंतन।

दुख को अभिशाप न मानिए। मानव मन बड़ा संवेदनशील है। वह जहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होता है, वहीं सांसारिक क्लेशों से विक्षुब्ध भी हो जाता है तथा सोचता है कि सृष्टि की इस अनुपम कृति में दुखों का प्रादुर्भाव कहाँ से हो गया है। अनेकों व्यक्ति इसका समाधान अपनी बुद्धि के अनुसार जन्म जन्मांतरों से संबंध जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। प्रचलित मान्यताएं भी यही है कि पूर्व जन्मों से संचित सुकर्म दुष्कर्म के बाद के जीवन में सुख दुख की परिस्थितियों का सृजन करते हैं। भाव अभाव सांसारिक सुख दुख एवं उपलब्धियां कमियों के विषय में यह तथ्य पूर्णतः सत्य है। पौराणिक मान्यता है कि कर्मफल देने वाले देवताओं के यहाँ भाग्य की पुस्तक में सभी मनुष्यों के कर्म लिखे जाते हैं। जैसे कि मान्यता है कि कर्मफल देने वाले जो भगवान श्री चित्रगुप्त हैं, मनुष्यों के कर्म यही लिखते हैं। इसी से स्वर्ग नरक का निर्धारण होता है। परंतु इससे भी अधिक मान्यता ऐसे सिद्धांत हैं जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का फल किसी न किसी प्रकार का संचित संस्कार बनाता है और मनुष्य का भावी जीवन उसी संस्कार के अनुरूप होता है। समाज में अनगिनत पापी सुखी जीवन व्यतीत करते दिखते हैं तो कई धर्मात्मा कष्ट सहते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। कर्मों की श्रृंखला यदि यहीं समाप्त हो गई होती तो बड़ा अन्याय होता है। इसलिए पूर्व जन्म और कर्मफल का अनुश्रय संबंध माना जाता है। इसी संसार में सुख और दुख की अनुभूति ही नरक और स्वर्ग है। जो मनुष्य को अपने कर्मानुसार सृष्टि की नियम व्यवस्था के अधीन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के जिन तत्वों से भौतिक शरीर का संबंध है उसी के साथ दुख के तत्व सुख के साथ ही आ जुड़ जाते हैं। वस्तुतः अपूर्णता का दूसरा नाम ही दुख है। समस्त मनुष्य में अंतःकरण में यही अनुभूति गंभीर रूप से विद्यमान होने से मनुष्य दुख की ही पूजा करता आया है, आराम की नहीं। महापुरुषों का उज्ज्वल इतिहास साक्षी है कि उनका विकास व्यक्तित्व का परिष्कार एवं उत्थान दुखों के बीच ही हुआ आता है। उसमें पलकर बढ़कर ही वे दृढ़ता महानता जैसे गुण उपार्जित कर सकते हैं जिससे समाज को नई दिशा मिली है। सदु उद्देश्य के लिए दुख की सहज स्वीकृति ही साधना है, वही तपस्या भी है। तप के कारण जो कष्ट मिलता है वह यूं दुख जैसा प्रतीत होता है, किंतु उसमें असमर्थ की आँखों से टपकने वाली कातरता नहीं है। यह तो रुद्र तेज के उद्दीपन आलोक है, ताप है, गति है, प्राण है, जिसमें अनादिकाल से मानव के जीवन प्रवाह को गतिमान रखा है। यह दुख मानव की दुर्बलता या असफलता का परिचायक नहीं है, वरन विकास का आधार है। यह दुख ही मनुष्य को नूतन सृजन के लिए पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। यह कर्म प्रेरक दुख ही मानव समाज में चक्रपथ में घूमकर नव सृजन की परिस्थितियों का निर्माण करता है। जिस प्रकार ईंटों को मजबूती देने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, उसी प्रकार तप रूपी ताप में तप कर मानव दृढ़ एवं साहसी बनता है। दुख अभिशाप नहीं, वरदान है। मनुष्य आत्मा की पूर्णता त्याग से, दान से एवं तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होता है। मनुष्य ने जो कुछ निर्माण किया है तब से ही किया है। तपस्या तब आ खड़ी होती है जब उद्देश्य पूर्ण कष्ट से मनुष्य असंतुलित हो जाता है। निवारणार्थ प्रयत्न करने एवं पुरुषार्थ करने के स्थान पर वह निराश होकर निषेधात्मक मार्ग अपनाता है। वस्तुतः मानव उत्थान का अब तक का इतिहास यही बताता है कि दुखों की मंजिल से गुजर कर ही मनुष्य वर्तमान की संपत्ति स्थित तक पहुंच सकता है। प्रतिकूलात्मा की चुनौती को मानव ने स्वीकार किया। मछली की तरह धारा को उल्टे चिरते हुए, प्रवाह बदलते हुए, वह अविष्ट परिस्थितियों का सृजन करते हुए वर्तमान विकसित स्थिति तक पहुँच सकता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम।

मौसमी के स्वर में आप सुन रहे हैं भगवान। अभी आपने सुना माता तुलसी की आराधना। अब आइए सुनते हैं इसी प्रोग्राम में देवों की आरती मौसमी के स्वर में।

0: आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मौसमी और साथियों के स्वरों में देवों की आरती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री कृष्ण कुमार से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय है वर्तमान जीवन शैली और बढ़ती बीमारी। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: बदलती हुई जीवन शैली ने हम लोगों को काफी प्रभावित किया है। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर चुपके से पहुंच जा रही है और आपको इसकी जानकारी तब पहुंचती है जब शरीर कुछ संकेत देने लग जाता है। दो तीन बीमारियां बहुत कॉमन है जिसे हम सभी जानते हैं, वो है ब्लड प्रेशर और शक्कर की बीमारी जिसे हम मधुमेह करते हैं। तो वर्तमान जीवन शैली से जुड़ी और भी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, क्या कारण

0: अपने जीवन शैली को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें कि हम स्वस्थ रहें और इन सारी बीमारियों से हम दूर रहें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान जीवन शैली ने हम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है, क्या क्या वो कारण हैं जो बीमारियां हम तक पहुंच रही हैं?
1: आजकल के जीवन में सबसे टेंशन बहुत ज़्यादा है, भाग दौड़ की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा है, लोग पास समय नहीं है अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। जब तक उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए तब तक वो किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं है और अपने हेल्थ पे ध्यान देते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक बीमारी नहीं होगा तब तक कोई कुछ मेडिसिन नहीं लेंगे, या हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे पहले ज़माने में जो किया जाता है तो आज बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बातें ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग का जो जीवन शैली के कारण जो 10 बजे के आसपास, पहले जो 8 बजे के आसपास सो जाना चाहिए, आजकल 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक लोग सोते नहीं हैं, तो उसका असर नेक्स्ट डे पड़ता है। घूमना फिरना सुबह जो मॉर्निंग वॉक जो है, योगा बिल्कुल छूटा हुआ है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी बात, खान पान जहाँ तक है जो फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, इसके कारण भी पेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जा रही है। उसकी वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर के डैमेज होने के कारण या तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी आ जाएंगे, इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और खाने के साथ साथ पानी, हमारे यहाँ पानी का भी जो इस्तेमाल होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में बीमारी के घर के लिए। अगर पानी आपका सही नहीं है, दूसरा हो गया खाना पीना भी सही नहीं है, तो पाचन तंत्र आपका गड़बड़ होगा। कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पानी पीना चाहिए, लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं है सही से, तो थोड़ा सा हाँ यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। हम लोग जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि सभी को कब्ज है, तो कब्ज क्यों है, तो मैदे की चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पानी भी सही से नहीं पी रहे, तो वो आपके लीवर को डैमेज करेगा और तो आपका कब्ज शिकायत स्टार्ट हो जाती है। सुबह कोई घूमते नहीं है, कम से कम किसी को भी आज के डेट में, डिपेंड करता है एज पे, फिर भी कम से कम तो आधा घंटा वॉक सुबह में और आधा घंटा रात में जरूरी है। वो खाना खाने से पहले आपको वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, उससे आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहेगा।
0: हमारे उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का और काम करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसे आपने कहा, रात तक, देर रात तक बैठकर काम करना और सही से खाना नहीं खाना, और खाना भी जब हम खाते हैं तो उसमें पौष्टिक तत्व का समावेश नहीं होता है और हम फास्ट फूड के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, और यही फास्ट फूड आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फिर आपको आलस का शिकार आता है, मन आपका तरोताज़ा नहीं रहता है, और फिर आपको काम में दूसरे दिन जब आपकी सुबह होती है तो आप अपने आप को ताज़ा महसूस नहीं करते हैं और फिर आपका काम प्रभावित होने लगता है। कैसे हम अपने जीवन शैली में सुधार करें? और जो तनाव का वातावरण व्याप्त है, कहा जाता है कि यत्र तत्र तनाव व्याप्त है, तनाव आपके साथ बना हुआ है, तो उस तनाव को हम प्रबंधन किस प्रकार करें, कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें कि ये जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं हम तक नहीं आए? क्योंकि जब आप बीमार रहेंगे तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा और इसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा और खर्च तो स्वाभाविक है।
1: खाना पीना और तो प्रॉब्लम सभी बात है ही, दूसरी बात है कि लोगों को अपने व्यवस्थित जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे खान पान की बात कर रहे हैं तो फास्ट फूड से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पूरा बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अचानक कोई बंद नहीं कर सकता, पर हाँ उसको बहुत हद तक कंट्रोल करके कम किया जा सकता है। जो हरी साग सब्जी है उसको खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दालें हैं उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि खाने का टाइमिंग है उसको आपको सेट करना होगा, मॉर्निंग में सुबह में जल्दी खाइए, रात में भी जल्दी खाइए, और सोने का टाइमिंग जो है वो आपको खाना खाने से 2 घंटे के बाद ही आपको सोना चाहिए। उससे बेहतर है कि आपका नेक्स्ट डे आप तरोताज़ा उठेंगे और फिर आपका जो जीवन शैली है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको हर बीमारी धीरे धीरे धीरे धीरे जकड़ने लगेगी, तो वो सही नहीं है फिर
0: जी। पहले डायबिटिक या ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद लोगों में होता था, आजकल देखा जाता है कि हमारे युवा साथी इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं, ये वर्तमान जीवन शैली इसका ज़्यादातर प्रभावित कर रहा है हमारे जीवन शैली?
1: हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वर्तमान जीवन शैली का ही है। कहा जाता है कि लीवर ही हमारे शरीर का घर है, बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ, अगर खाना खाते हैं आप बिल्कुल वहाँ पे, अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर का असर पड़ेगा आपको धीरे धीरे, वो अगर वो सही फंक्शंस नहीं करता है तो

0: कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ने लगेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा उसको मैनेज करने के लिए डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। सबसे पहले तो आपको लीवर को सही करना पड़ेगा, उसके लिए खाना बिल्कुल सही है और पानी भी सही होना चाहिए। पहले कुआं और कुएं का पानी पीते थे, उसमें पानी में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता था। आजकल लोग फिल्टर पानी पीते हैं तो उसको पीएच लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो गया, तो वो पीएच लेवल कम होने का मतलब है कि एसिडिक पानी हो जा रहा है। तो अगर खाना आप एसिडिक खा रहे हैं, पानी भी आप एसिडिक पी रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपका लीवर और ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो डैमेज होंगे। अब वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हम खाना तो खा रहे हैं बस सही खाना खा रहे हैं नहीं। और आजकल जो हम लोग सब्जी में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से तो अच्छा से खरीद के लाते हैं, पर वहाँ काफ़ी हद तक उसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ रहता है, तो वो उसको कैसे रिमूव किया जाए उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये अभी के समय में ही जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, अपने भोजन में हम किन किन चीज़ों का समावेश करें, क्या क्या खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें?
0: देखिए क्या हो रहा है कि जिस सीजन में जो चीज़ मिलता है उसको खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो आपके सीजन में अभी नहीं है वो खाएंगे तो वो या तो कोल्ड स्टोरेज कर रहेंगे तो वो आपके नुकसान ही करना है, फ़ायदा नहीं करना है।
1: मतलब मौसमी फल फूल का हम सेवन करें,
0: मौसमी फल और फूल आपको सेवन करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक के पीछे लोग भाग रहे हैं, पर ऑर्गेनिक ऐसा कुछ होता नहीं है इस वक्त, ऑर्गेनिक ऐसा है नहीं। ऑर्गेनिक के नाम पे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं बेसिकली। कि ऑर्गेनिक के लिए देखना पड़ता है हम लोगों की अगर मिट्टी आपका ऑर्गेनिक नहीं है तो ऑर्गेनिक आपका फल फूल भी नहीं आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि सही चीज़ खाएँ और पानी वगैरह सही पिए, खाना सही खाएँ, तो बिल्कुल आप हेल्दी लाइफ जियेंगे। अदरवाइज डिफरेंट बीमारी थोड़े कैंसर भी उस वजह से आ जा रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छा खाएं और अच्छा सोचिए।
0: बिल्कुल सही, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और स्वस्थ रहें, यही सबकी कामना, हम लोग की सभी की कामना यही रहती है। बस आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और सुबह शाम वॉकिंग कीजिए और देर तक जागना बंद करना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसको थोड़ा सा रात में अलग करके रखिए जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो नींद में, और सुबह उठिए बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे बस
1: जी। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने से दूर रखिए और एक अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कल फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार से ली गई पूर्व प्रसाहित भेंट वार्ता, विषय था वर्तमान जीवन शैली और बढ़ती बीमारी। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

0: एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की सुबह जमा करेंगे। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोग पञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालयांतर्गत उच्च शिक्षा विभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पंच शास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पंच उत्कृष्ट केन्द्राणि अंगीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीय भाषाणाम् भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, संगणकीयकरणाय, उच्च शैक्षणिक अनुसंधानाय, ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामी वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तम दिनांकात् नवम दिनांकं यावत् पश्चिम बंग राज्यस्य कोलकाता नगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्रे अध्यक्षतां वहन्ति, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
1: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूढ़ी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरि उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम् अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत् यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य, बैंकिंग परिष्काराणां, वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ़ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढ़ं अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इजराइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामी स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इजराइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परम्परागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे।

0: भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

8:45 पर हम आपको सुनाएंगे बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा। चर्चा की जाएगी वन्य जीवन का संरक्षण कितना आवश्यक है और इसी प्रोग्राम में आप सुनिएगा विजया लक्ष्मी की वार्ता। विषय होगा संतुलित पर्यावरण सबके लिए जरूरी और बच्चों के लिए। गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनवाएंगे और 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जोहार पनामू। आज का जोहार पलामू कार्यक्रम रहेगा 1 घंटे का। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे आज का सुविचार, खेलों की बातें, विज्ञान से संबंधित बातें, स्वास्थ्य जानकारी, स्थानीय गतिविधि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। और इसी प्रोग्राम में आप सुनिएगा विवेक रंजन की बात। विषय होगा पशु हमारे मित्र। इस प्रोग्राम के संयोजनकर्ता होंगे प्रशांत गौरव और प्रस्तुति स्वर होगा संजय कुमार सिन्हा का। दिन के 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से सुनिएगा। 10:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लौटेंगे स्टूडियो 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। पर आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 6 बजे आप सुनिएगा हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा जननी 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से। गीत गजलों का प्रोग्राम हम लेकर आएंगे स्वरांजलि 7:15 पर। कलाकार होंगे गुलाम अली। महुआ कार्यक्रम का समय रहेगा 7:45। कलाकार होंगे जनक सिंह महतो और उनके साथी। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। गैर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आप सुनिएगा गीत संगीत 8:30 पर। कलाकार होंगे गुरदास मान। समाचार संध्या 8:45 पर। न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे और 9:15 पर आप सुनिएगा उर्दू में खबरें। विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए शामिल होंगे हम अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा स्पेशल प्रोग्राम 20th edition ऑफ एशियन गेम्स 2026। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन।

राग रंग के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे संतूर वादन, कलाकार थे पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। स्वर सरिता कार्यक्रम में लीजिए सुनिए चंदन दास की गाई हुई गजलें।

अभी आपने सुनी इब्राहिम आशिक की लिखी हुई गजल चंदन दास की आवाज़ में। अब आई सुनते इन्हीं की आवाज़ में यामिनी दास की नज़्म।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में हमारे आज के कलाकार हैं चंदन दास। अब ऐसे सुनते हैं कि आवाज़ में रिफत खर दोष की लिखी हुई गजल

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की

0: समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों बुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जाँच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक

0: सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्ट इंडीज

0: के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले दो मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले दो दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centers of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan, trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson.

0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्यभर में अगले 10 दिनों में पूरा होगा बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा, देश के सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़ने की पहल जारी, झारखंड को भी मिलेगा लाभ। कोल इंडिया कर्मियों को मिलेगा 1,10,250 रुपए बोनस, 15 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान, झारखंड के बाजार में आएंगे 660 करोड़ रुपए। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर देगा निःशुल्क कोचिंग, करीब 10,000 छात्र छात्राओं को जेईई और नीट की भी कराएगा तैयारी। और एशियन गेम्स 2026 का आज होगा समापन, गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ियों को 40-40 लाख रुपए देगी झारखंड सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के श्रीनिवासन ने बताया कि निर्बाध बिजली के लिए मरम्मत कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका और मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को भी यह आदेश भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पंडाल और बिजली तारों के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह भोपाल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा है कि देश के सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके तहत झारखंड के भी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आईडी से जोड़ने के बाद आदमी की सभी चिकित्सा जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से हमेशा के लिए दर्ज रह सकेंगे। श्री वर्णवाल रांची में विकसित भारत 2047 के लिए खनन क्षेत्रों में सुधार पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कोल इंडिया के कर्मियों को इस बार 1,10,250 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। बोनस का भुगतान 15 अक्टूबर से पहले कर दिया जाएगा। बोनस का लाभ कोल इंडिया लिमिटेड के करीब 2 लाख स्थायी कर्मियों को मिलेगा। इसके अलावा ठेके पर काम कर रहे कर्मियों को भी बोनस एक्ट के प्रावधान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस बोनस से झारखंड के बाजार में लगभग 660 करोड़ रुपए आएंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश प्रगति की रफ्तार पर चलता रहे, यही उनकी कामना है।
2: परमात्मा कहीं है और किस रूप में है, ये मानने का विषय है। परमात्मा की आस्था हम सब पर बनी रहे, हमारा देश प्रगति की रफ्तार पर चलता रहे, और हम जैसा मानते हैं कि हमारा राज्य निश्चित रूप से देश के प्रगतिशील राज्यों में माना जाए, ऐसा हमारा विश्वास।
0: इस अवसर पर राज्यपाल के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: राज्य सरकार के कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देगा। इससे यहां पढ़ने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इन विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। दिसंबर महीने तक कल्याण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच इस संबंध में एमओयू होने की उम्मीद है। राजधानी रांची के चौक चौराहों पर अब यातायात पुलिस के जवानों के लिए आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि शहर के प्रमुख 20 स्थानों पर तैयार हो रहे इन हाईटेक ट्रैफिक पोस्ट में जवानों के लिए कई सुविधाएं होंगी।
1: ट्रैफिक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, इसका दो पर्पज है। एक तो हमारे जो जवान और खासकर जो हमारी महिला फोर्स है उनके वॉशरूम के लिए और उनके लंच करने के लिए, तो जो कई बार एक शिकायत आती है कि ट्रैफिक पोस्ट के अंदर ले जाके हमसे पैसे मांगा, ऐसा आरोप ना लग सके और उसको एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाए।
0: जमशेदपुर के सीताराम डेरा में पिछले दिनों हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिम ने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण यह गोलीबारी की घटना हुई थी।
2: 11:30 बजे रात 1 तारीख को 3 अपराधियों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस और 1 होंडा स्कूटी बरामद हुआ, जिससे वो घटना कारित किए थे और जिससे वो भाग रहे। भागने के दौरान एक अभियुक्त पुलिस के चेज में गिर गया, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बाकी इन लोगों का पूर्व से अपराधिक इतिहास रहा। एक राज सिंह कश्यप उर्फ कोदू, जिसे 5 केस दर्ज है, और एक दशरथ शुक्ला है, जो 12 केस ऑलरेडी दर्ज है।
0: उपराजधानी दुमका के कमार दुधाने स्थित तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में 2 दिवसीय 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन दुमका के सांसद नलिन सोरेन और जामा विधानसभा के विधायक सह जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉ लुइस मरांडी ने किया। डॉ मरांडी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में राज्य भर से करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
3: स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रहा है। हम अध्यक्ष हैं इस आर्चरी संघ के दुमका जिला के, और हमारा पूरा टीम सभी जिला से हमारा पार्टिसिपेंट आए हैं और 250 प्लेयर आए हैं। राज्य स्तर का गेम है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ गेम होगा, ऐसा हम लोग का प्रयास।
0: एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य सरकार 1,60,00,000 रुपए बतौर पुरस्कार देगी। इसके तहत हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्के प्रधान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग को 40,40,00,000 रुपए मिलेंगे। ये सभी महिला हॉकी की उस टीम में शामिल थीं जिसने गोल्ड मेडल जीता है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने आज एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है, गोल्डन 5 के साथ 4थे स्थान पर पहुंचा भारत। प्रभात खबर ने लिखा है, 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज मैच पर पड़ बारिश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी में पैसे देकर पीटी परीक्षा पास करने वाले 2 भाइयों को सीआईडी ने हजारीबाग से किया गिरफ्तार। और हिंदुस्तान लिखता है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य भर में अगले 10 दिनों में पूरा होगा बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा, देश के सभी लोगों को आभा आईडी से जोड़ने की पहल जारी, झारखंड को भी मिलेगा लाभ। कोल इंडिया कर्मियों को मिलेगा 1,10,250 रुपए बोनस, 15 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान, झारखंड के बाजार में आएंगे 660 करोड़ रुपए। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर देगा निःशुल्क कोचिंग। करीब 10,000 छात्र छात्राओं को जेईई और नीट की भी कराएगा तैयारी। और एशियन गेम्स 2026 का आज होगा समापन। गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ियों को

0: जन्म के एक घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
1: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
0: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
1: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
0: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
1: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
0: पानी भी नहीं।
1: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
0: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
1: स्वस्थ बच्चा खुशियाँ अपार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मुन्ना कैसे ऋतु, तुम्हें तो दस्त हो रहा था,
0: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
4: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
5: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
4: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
5: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
4: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
5: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें,
4: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पल में यहां,
2: पल में वहां,
1: बेरोक।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। 8:45 होने को हैं। प्रस्तुत है बच्चों को संबोधित हमारा कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चों को जय हिंद और नमस्कार। बच्चों, चर्चा करना चाहेंगे वन्य जीवों संरक्षण पर। वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। वन्य जीवों संरक्षण, इसका संरक्षण कितना आवश्यक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण के माध्यम से पशु, वनस्पति और उनके आवासों का संरक्षण किया जाता है। वनों की तरह ही वन्य जीवों भी एक राष्ट्रीय संसाधन है जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देते हैं और आर्थिक, मनोरंजक और सौंदर्य संबंधित दृष्टि से भी मूल्यवान हैं। एक समय था जब मानवीय हस्तक्षेप नहीं था, बहुत सारे जंगली जानवर थे और उनके संरक्षण या बचाव में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि कृषि, बस्तियों, उद्योगों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही

श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं वन्य जीवन संरक्षण पर। हम प्राय देखते हैं कि हमारे जो पलामू ज़िले हैं, पलामू ज़िले में भी राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें भी वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसका अवलोकन करने हम सभी जाते हैं और देखते भी हैं कि जंगली जो है जानवर विचरण कर रहे हैं। तो इसका हमें अवलोकन करने के साथ ही संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। संरक्षण का ख्याल जैसे क्या है कि हमें जो वन्य जीवों

का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से दूर अपने आवाज़ को बनाना है। प्राय आपने देखा होगा कि जो जानवर एक रास्ता बना देते हैं, जब विशेषकर हाथियों का जो झुंड निकलता है, एक रास्ता वो बना लेते हैं और रास्ता बनाने के क्रम में हमेशा उसी रास्ते से चलते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके रास्ते में ना आएँ, उनसे दूर अपने आवाज़ क्षेत्र को बनाएँ, जिससे उन्हें पूर्ण शांति और संरक्षण प्राप्त हो सके। और हो सके तो उनसे दूर आवास बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो भी चाहते हैं कि हम मानव से वो दूर रहें और सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी बढ़ोतरी भी कर सकें। हमारा कर्तव्य बनता है कि वन्य जीव जो संरक्षण है, इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और जागरूकता लें। ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा।

सच में जी बच्चों, आप जो हैं देश के सिपाही और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने वन्य जीवों को बचाएं। इसके लिए चाहिए क्या है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो है देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमारे लिए प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। वन ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को नियंत्रित रखते हैं, इसलिए जल और मिट्टी का संरक्षण भी पेड़ वर्षा आकर्षित करते हैं। भूमि का कटाव रुकता है, बाढ़ एवं सूखे की संभावनाओं को कम करता है। वनों को नष्ट होने के मुख्य कारण जो है वो है शहरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ती आबादी के लिए पेड़ का काटा जाना। जंगलों को साफ करके कृषि भूमि में भी बदलाव किया जा रहा है कृषि विस्तार के माध्यम से। और जंगल में आग प्राय देखा जाता है कि वो कुछ महुए के फूल को चुनने के लिए, फलों को चुनने के लिए लोग आग लगा देते हैं, और जिससे क्या होता है जंगल में आग लग जाती है और बहुत सी जो है मानवीय कारण के कारण ये जंगल जल जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है। वन संरक्षण के जो उपाय हैं, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान का महत्व के तहत अधिक से अधिक पेड़ को लगाना है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कड़ाई से पालन भी हो रहा है, जिसे वन भूमि का गैर वन कार्यों के उपयोग को रोका भी जा रहा है। जागरूकता लाने के लिए स्कूल, कॉलेजों और आम जनता के बीच पेड़ों के कटाव से होने वाले नुकसान के प्रति प्रचार प्रसार भी करना बहुत ही जरूरी है। वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, लकड़ी की जगह अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का भी प्रयोग करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वन में रहने वाले लोग जो हैं वैकल्पिक साधनों का प्रयोग धीरे धीरे कर रहे हैं, वो कुकिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और गोबर से बने कंडे का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे वनों का कटाव रुक रहा है। इसमें हम सबों का भी योगदान जरूरी है। बच्चों,

0: बच्चों आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम बाल सभा। इसी प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं विजया लक्ष्मी की वार्ता। विषय है संतुलित पर्यावरण सबके लिए जरूरी।
1: दोस्तों मैं विजया लक्ष्मी। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ परिवेश है। दूसरे शब्द में कहे तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उनकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। इन आपदाओं से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग पर्यावरण का शास्त्र अनुसार सम्मान और संरक्षण करते थे। मनुष्य की प्रकृति पर निर्भरता आदि काल से चली आ रही है, इसलिए विश्व की प्रत्येक सभ्यता में प्रकृति की पूजा का प्रबंध है। प्राचीन भारतीय समाज भी प्रकृति के प्रति बहुत ही जागरूक था। वैदिक काल में प्रकृति के विभिन्न अंगों, भूमि, पर्वत, वृक्ष, नदी, जीव जंतु आदि की पूजा की जाती थी। प्रकृति के प्रति मनुष्य की असीम श्रद्धा के कारण पर्यावरण स्वतः सुरक्षित था। विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया एवं एक सीमा तक प्रकृति उस नुकसान की भरपाई स्वयं कर सकती थी, लेकिन जब उसकी स्वतः पूर्ति सीमा समाप्त हो गई तो पर्यावरण असंतुलित हो गया। पौधा लगाकर और चारों तरफ हरा भरा रखने से पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। जब पर्यावरण संतुलित होगा तो हमारा जीवन भी संतुलित रहेगा। हम सभी को पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम सभी को जागरूक करते हैं कि हम सभी पौधा लगाएं और प्रकृति को बचाएं। नदियों को साफ रखने का संकल्प लेते हैं, अपने अगल बगल के वातावरण को शुद्ध रखते हैं और सभी से आह्वान करते हैं कि गंदगी ना फैलाएं। पर्यावरण से ही हमें वो सभी चीज उपलब्ध होती है जिसका इस्तेमाल करके आज मानव जीवित है और आराम और सुखदायी जीवन व्यतीत कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण हमारा फर्ज है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। हम जितना हो सके उतना पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के अमल में लाना चाहिए। कृषि में भी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यह सब तत्कालिक रूप से लाभप्रद दिखते हैं, लेकिन दीर्घकाल में इनके दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। इस प्रकार अन्य विकासात्मक कार्य जैसे सड़क निर्माण, बांध, रेलवे, खनन आदि भी पर्यावरणीय नुकसान में अपना योगदान करते हैं। साथ ही कुछ परंपरागत कारण जैसे वनों का दोहन, अवैध कटाई भी पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ते हैं। वर्तमान में अधिक विकास की दौड़ में विश्व के सभी राष्ट्र अपने औद्योगिक विकास को हर कीमत पर जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगे हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकौड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और

0: अजैविक तत्वों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। अतः हमारा दायित्व है कि हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाएं। केवल इतना करने से ही विकास के नाम पर पर्यावरण को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी। यही सतत विकास की संकल्पना का आधार है।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे विद्या लक्ष्मी की वार्ता। विषय था संतुलित पर्यावरण सबके लिए जरूरी। तो चलते चलते सुनते हैं एक छोटा सा प्यारा सा फिल्मी गीत।

एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा नियमित प्रोग्राम जोहार पलामू। जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का विचार, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है।

स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार न करें, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील होता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो। तो इस सुविचार के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। बातें करेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी, जैसा कि प्राय हमारे क्षेत्र में जो कद्दू पाए जाते हैं, कद्दू के लाभ, कद्दू के तो सब्जी हम खाते ही हैं, लेकिन इसकी जो है स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लौकी जो है, इसमें गुजराती भाषा में इसे दुधी बोलते हैं। भोपाल लौकी मीठी तुम्बी, रामतुरई, घिया आदि नामों से लौकी को भी जाना जाता है। लौकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। लौकी का जूस, सलाद तथा हरी सब्जी के उपयोग हम सभी करते हैं। क्षारीय खाद होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य लक्षण में इसकी अहम भूमिका होती है। अम्लता का दूर करती है। लौकी की रायता भी स्वाद एवं स्वास्थ्य कारक होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन बी तथा आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिज लवण पाए जाते हैं लौकी में। लौकी मेधावर्धक, हृदय के लिए हितकारक, निद्राकारक, कफ निस्कारक माना जाता है। यह ज्वारनाशक, दाहनाशक, गर्भ को पोषण देने वाली तथा खांसी, टीबी, रक्त, पित्त इत्यादि में लाभदायक है। मस्तिष्क की दुर्बलता तथा उन्माद, अनिद्रा इत्यादि मनोरोगों में इसका प्रयोग लाभकारी माना जाता है। सामान्य तौर पर दुर्बलता दूर करने के लिए यह पौष्टिक रसायन की तरह उपयोगी है। सावधानी भी जरूरी है। लौकी को काटकर चख कर देखें। यदि स्वाद कड़वा हो तो इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। कड़वे स्वाद वाली लौकी अत्यंत हानिप्रद होती है। लौकी का स्वाद मीठा होना चाहिए। एक लौकी का स्वरस 50 से 150 ग्राम रस प्रदान करता है। लौकी के पत्तों का रस 10 से 25 ग्राम और लौकी के बीजों का चूर्ण 3 से 6 ग्राम इसका चूर्ण बनता है। उपयोग है, पीलिया में लौकी के पत्तों का रस 20 ग्राम में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर 3 बार सेवन करने से पित्त दोष का शमन होता है। लौकी को कंडे की आग में भूनकर उसका रस निकाले। 100 ग्राम रस में स्वादानुसार मिश्री घोलकर पीने से यकृत यानी लिवर संबंधी रोगों का निवारण होता है। कम से कम यह प्रयोग 21 दिनों तक करना चाहिए। चाय, मिर्च मसाले तथा गले तले खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। फलों का रस, दही तथा फलों का सेवन करना लाभप्रद होता है। खूनी बवासीर में भी लौकी के छिलकों को छाया में सोकर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन 5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। गरम मसाला तथा गरम तासीर के खादों का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। अगर बवासीर से आप ग्रसित हैं तो अम्लपित्त में, अम्लपित्त के रोगियों को प्रतिदिन 10 ग्राम लौकी का रस पिलाने से लाभ होता है। मिर्च मसाले तथा सफ़ेद नमक से परहेज करना चाहिए अम्लपित्त के रोगियों को। नकसीर में लौकी के बिना मिर्च से उबली सब्जी नित्य सेवन करने से रक्त पित्त का शमन होता है। नाक से रक्त श्राव होने का रोग दूर होता है। सफ़ेद नमक के स्थान पर सिंधा नमक खाएं तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। हाथ पैर के तलवे में जलन होने पर भी लौकी काटकर हाथ पैरों के तलवे पर मलने से जलन दूर होती है। अस्थाई लाभ के लिए बिना मिर्च मसाले से लौकी की उबली सब्जी मात्र सेंधा नमक, जीरा, धनिया और हल्दी डालकर बनाएं तथा चोकर युक्त आटे की रोटी या दलिया के साथ ही सब्जी का सेवन नित्य करने से पूर्ण लाभ होता है। अस्थमा में भी लौकी को आग में भूनकर उसका 200 ग्राम रस नित्य प्रायः 2 माह तक पिलाने से लाभ होता है। मुहासे तथा झाइया में भी लौकी के छिलकों को पीसकर पेस्ट बनाकर नित्य चेहरे पर लगाने से लाभ होता है। 1-1.5 घंटे तक लेप लगा कर रख दें, तत्पश्चात ठंडे पानी से धो लें। यह प्रयोग 15 से 20 दिनों तक करें, लाभ होगा। लौकी का रस निकालकर खाली पेट 1 कप 2 बार पिलाने से लाभ होता है। उन्माद, पागलपन, सिर दर्द की बीमारी में भी इसका लाभ होता है। कद्दू पीतकारक, वातकारक, पौष्टिक, प्यास, तृष्णा मिटाने वाला होता है। वात एवं कफ प्रकृति के रोगों को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। कद्दू के बीज विषनाशक तथा कृमिनाशक होते हैं। कद्दू में पाया जाने वाला कैरोटोनिक नामक तत्व तो कैंसर एवं हृदय रोग से बचाता है। कद्दू में पाया जाने वाला विटामिन ए नेत्र ज्योति बढ़ाता है। रतौंधी में भी कद्दू लाभप्रद होता है। कद्दू में ट्रिटोफैन होता है जो अनिद्रा दूर करता है।
सेरोटोनिन भी होता है जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। कद्दू में विटामिन ए, बी, बी टू, बी सिक्स तथा विटामिन डी, विटामिन ई भी पाया जाता है। विटामिन कैरोटीन तथा एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी मात्रा में होता है। कॉपर, आयरन, फास्फोरस इत्यादि भी कद्दू में पाए जाते हैं। दिमागी गर्मी, सिर दर्द और उन्माद में भी कद्दू बहुत लाभप्रद होता है। 50 ग्राम कद्दू के फल को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते तथा थोड़ी सी इमली और देसी खांड स्वाद के अनुसार तथा दो छोटी इलायची पीसकर आग पर पकाकर मसलकर छानकर ठंडा होने दे। यह स्वादिष्ट पेय पीने से दिमागी गर्मी मिटाकर उन्माद को नष्ट करता है। इसे नियमित पीने चाहिए या पेय ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे बहुत ही दिमागी गर्मी और सिर दर्द में आराम होता है। तो श्रोताओं, ये तो हो गई स्वास्थ्य संबंधी बातें, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं

श्रोताओं, मैं हुसैन जैसी ने और आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पड़ा हूँ। अब स्थानीय सूचना। आज है यानी 10 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र रड़मा में खराब हुए 33 केवी मेन ब्रेकर को बदलने का कार्य किया जा रहा है। कार्य किए जाने के कारण फील्ड में अनुरक्षण का कार्य, पेड़ों की कटाई और मरम्मती के कारण दिन के 10 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। शहरी क्षेत्रों में रेडमा फीडर, मिनी बैरिया फीडर, न्यू पीएचडी फीडर, रांची रोड फीडर, हाउसिंग कॉलोनी फीडर, जेएलए कॉलेज फीडर, ओल्ड पीएचडी एवं जमुनी फीडर से जुड़े क्षेत्रों जैसे हाउसिंग कॉलोनी रड़मा, रांची रोड, जेले कॉलेज, पांकी रोड, ब्रेटलैंड बाईपास रोड, दो नंबर टाउन, कांदू मोहल्ला, बेलवाटिका, नई मोहल्ला, भूसी, आबादगंज, कुंजरा पट्टी, जमुनी, सुमदाण इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति जो है बाधित रहेगी। रब्दा में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक फैला हुआ है। प्रखंड के रब्दा पंचायत और आसपास के गांवों में जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से किसान परेशान है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले एक दो दिनों में करीब 18 से 20 हाथियों का झुंड रात में गांव के आसपास पहुंच जाते हैं और खेत में लगी धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुँचाते चले जाते हैं। हाथियों के भय से ग्रामीण रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। रब्दा गांव के लोग जो है इसकी शिकायत किया है स्थानीय स्तर पर और बैंकों में सीसीटीवी हर वक्त चालू रहे, इस ये बातें कही है एसडीपीओ ने। पलामू पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कई बैंकों की शाखाओं में पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में एसबीआई मेन ब्रांच, बाजार ब्रांच, पथरा ब्रांच, पीएनबी, कैनरा, ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने सुरक्षा व्यवस्था, अलार्म सिस्टम एवं रनिंग रजिस्टर की जांच की। साथ ही उन्होंने आपातकालीन अलार्म, सायरन और सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रांग रूम, एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। ये तो हो गई स्थानीय खबरें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्मी गीत।

अब बातें करेंगे खेल की। भारत ने एशियन गेम्स में एक बार फिर 21 स्वर्ण सहित 85 पदक जीतकर शीर्ष चार में जगह बना ली है। भारत का यह सफर किसी लंबी दौड़ की तरह शुरुआती धीमी रही, लेकिन मंजिल आते आते रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। पदकों की चमक ने पूरे अभियान को स्वर्णिम बना दिया। शुरुआती दिनों में भारत 15वें स्थान तक खिसका, मगर खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। शूटिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, क्रिकेट और हॉकी में शानदार प्रदर्शन ने भारत को पायदान दर पायदान ऊपर पहुंचाया। आखिरी दौर के प्रदर्शन ने तस्वीर बदल दी और भारत चौथे स्थान पर आ गया। इस बार 21 स्वर्ण मिले हैं। 3 खिलाड़ियों ने पहली बार लगाई पदकों की हैट्रिक।

भारतीय महिला टीम में जो है कबड्डी में भी हासिल किया है, एथलेटिक्स में भी मिला है स्वर्ण पदक, तीरंदाजी में मिला। इसके बाद आप हॉकी और क्रिकेट में भी मिले हैं। क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जो है भारत प्राप्त किया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान को 19 रन से हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय महिला टीम ने भी श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता था। शनिवार को पहली बार एशियाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुकाबला फाइनल में था। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतकों की मदद से भारतीय ने हसन नवाज की आक्रामक पारी के बावजूद रोमांचक फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 19 रन से हराकर शनिवार को यहां एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट में अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। अभिषेक ने 28 गेंद पर 61 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर 51 रन की पारी खेली, जिसे भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 211 रन का बड़ा स्कोर बना दिया। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं सूर्यवंशी, जो सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वैभव सूर्यवंशी ने अभी एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय टीम ने शनिवार को हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वैभव की उम्र 15 साल 190 दिन है। एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय होने का रिकॉर्ड पहले निशानेबाज सौरभ तिवारी का नाम दर्ज था। उन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तब उनकी उम्र 16 साल थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी 15 साल 190 दिन है, तो इसी कारण सूर्यवंशी एशियन गेम्स में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। अब थोड़ा हम डाल लें नज़र एशियन गेम्स में जो है पदक की तालिका में। तीरंदाजी में 5, सिलवरे में 2, ब्रांच 2 मिले हैं, कुल 9 पदक हुए। एथलेटिक्स में स्वर्ण 1 मिला है, सिल्वर 9 मिले हैं, ब्रांच जो है 14 मिले हैं, कुल 26 हुए। बैडमिंटन में ब्रांच 1 मिला और कुल 1 पद है। मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण मिले हैं, ब्रांच 3 है, कुल 6 पदक हुए। क्रिकेट में 2 स्वर्ण हैं, कुल पद 2 है। गोल्फ में स्वर्ण 1, सिल्वर 1, कुल 2 पद हुए। कुल मिलाकर भारत ने 85 पदक हासिल किया। और आज ही एशियन गेम्स का जो है समापन होगा जापान के शहर में, और पूरे उत्साह के साथ इसका समापन किया जाएगा। भारतीयों ने अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और फिर से शीर्ष 4 में अपना 4 नंबर में अपना स्थान बरकरार रखा।

बातें करेंगे। प्रणवी उर्षी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। उन्होंने आखिरी दौर में थकान से उभरते हुए एक स्ट्रोक की बढ़त बरकरार रखकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की और टीम को भी रजत दिलाया। मैसूर की 23 वर्ष की प्रणवी ने तीसरे होल में ट्रिपल बोगी करने के बाद तीन बड़ी बॉडी लगाए। आखिरी दौर में उन्होंने इवन पार 70 स्कोर किया और चार दिन में कुल स्कोर 15 अंडर 265 रहा। चीन की यिन रुओनिंग ने रजत पदक जीता जबकि सिंगापुर की शैनोन टैन को कांस्य पदक मिला। प्रणवी ओलंपिक के अदिति अशोक आखिरी दौर में 67 और दीक्षा डागर आखिरी दौर में 77 की टीम ने रजत पदक जीता। भारत ने 14 अंडर 546 स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में अमन ने दिलाया स्वर्ण, अंतिम रजत पदक जीत लिया। अमन सरावत ने एशियाई खेलों में अपने कांस्य पदक को स्वर्ण में बदल दिया जबकि महाद्वीपीय खिलाड़ी जीतने वाले केवल दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनने की अंतिम पंगहार की कोशिश को जापान की मेई मियोका के हाथों हार के साथ निराशा का सामना करना पड़ा। मियोका ने शनिवार को यहां अंतिम को एक तरफा मुकाबले में शिरकत दी जिसे भारतीय पहलवान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने कुश्ती प्रतियोगिता में 6 पदकों 2 स्वर्ण 2 रजत और 2

दो कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। यह 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान से चूकने के बाद भारत की इस प्रतियोगिता में सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक रहा।

0: श्रोताओं, मैं हूँ संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहर पलामू। बातें करेंगे आज की, हमारे समाज की यह गलत धारणा बन गई है कि सफाई करना एक जाति विशेष का काम है। इसके विपरीत गंदगी फैलाना सबका काम है। तथाकथित सभ्य कहलाने वाले गंदगी से दूर रहना तो चाहते हैं, परंतु गंदगी को दूर नहीं कर पाते। अपना घर झाड़ बुहार कर कूड़ा किसी दूसरे के दरवाजे पर डाल आना अथवा सड़क या नाली में डाल देना, ये उनकी आदत हो गई है। कुछ शिक्षित और स्वच्छ प्रेमियों के लिए आम बात हो गई है। इसे चाहे अन्य यात्रियों को अथवा मोहल्ले वालों को किसी तरह की परेशानी न हो, उन्हें क्या। बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे अपने मोहल्ले में भी कि घर को लोग साफ रखते हैं लेकिन अपने घर के कचरों को सामने सड़क पर फेंक देते हैं। ये बहुत ही शिक्षित कहलाते हैं, परंतु ये उनका स्वभाव दर्शाता है कि वे किस तरह के लोग हैं। सफाई की बातें हम करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सफाई से हम दूर हो जाते हैं। उनका अपना घर तो साफ हो गया, नाली रुक कर चाहे सड़न पैदा करे, कीटाणु बढ़े, सड़क पर चलने वाले यात्री चाहे छिलके पर पैर पड़ने से फिसल कर गिर जाए, उन्हें क्या, वे तो अपना घर साफ रखेंगे। स्वच्छता प्रेमी जो हैं, रेल अथवा बस में सफ़र कर रहे हैं, मूँगफली खाई और छिलका वहीं फैला दिया, पान खाया तो पीक वहीं थूक दी, संतरे केले खाएँ तो छिलका बिखेर दिया, बीड़ी सिगरेट पिए और वहीं ठूस वहीं पर बैठ कर कहीं खोस दिया या फेंक दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जगह अस्वच्छता फैलाना अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि समझते तो वह हैं कि उनकी सफाई करने वाला तो कोई दूसरा आदमी नियुक्त किया जाएगा। अनेक लोग फुटपाथ पर बिकने वाले ठेलों पर चार पकौड़ी खाते हैं और जूठा पत्ता कागज़ का प्लेट आदि वहीं डाल देते हैं, हवा में उड़ा कर वहीं फेंक देते हैं, जहां वही उड़कर राहगीरों के ऊपर पड़ते हैं। किसी का कपड़ा खराब हो जाता है, सड़क गंदी हुई, सो अलग, किसी की कार या स्कूटर बिगड़ गया, रास्ते पर ही खोलकर मरम्मत की और काली तथा कचड़ा वहीं छोड़कर शान से गाड़ी पर चलते बने। पीछे किसी यात्री का पैर उसमें पड़ने से गिर गया हो या कपड़े उनके खराब हो गए हैं, कागजात नष्ट हो गए हैं अथवा कपड़ा रंग गया, लघु शंका और दीर्घ शंका निवारण हेतु उपयोगिता कक्ष कौन ढूंढे, सड़क करे के आसपास ही लोग निपट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी जो पढ़े लिखे हैं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं, अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया गया, बहुत से जो है लोग इस अभियान का अंग भी बने। आवश्यक कागजात नष्ट हो अथवा कपड़ा रंग जाए, इसे क्या लेना, इसका मुख्य कारण विचार करने की है। यही लगता है कि लोगों में अपने गांव और शहरों के प्रति अपनत्व की भावना नहीं बन पाई है। वे केवल अपने घर तक ही सीमित रखते हैं। चौखट के बाहर चाहे कितनी भी गंदगी फैले रहे, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। कई लोग यह सोचते हैं कि सार्वजनिक स्थान तो गंदे रहते ही हैं, फिर हम ही उसमें थोड़ी सी अस्वच्छता फैला दे तो कौन सा अंतर पड़ता है। यदि हम सफाई करेंगे तो भी दूसरे आकर पुनः गंदगी फैला देंगे। गांव में लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते, परंतु शहरों में अस्वच्छता का एकमात्र कारण नागरिकों की लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता की भावना ही मालूम पड़ती है। श्रोताओं, अस्वच्छता से होने वाली प्रत्यक्ष और परोक्ष हानियों से प्रायः सभी परिचित हैं, परंतु इसके निवारण की ओर कोई ध्यान नहीं देता। स्वच्छता के अभाव में हमारा शरीर, मन, वातावरण सारा का सारा दूषित हो जाता है। कई व्यक्ति तो गंदी आदतों के कारण अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर पाते, जिससे जुए पड़ जाते हैं, दांत, खाज, खुजली उनके शरीर पर हो जाते हैं, बीमारियाँ जो हैं उन्हें घेर लेती है। परोक्ष हानियों तो अप्रत्यक्ष हानियां भी होती है, अधिक हानिकारक खतरनाक भी हो सकते हैं। भारत की प्राचीन मान्यता और संस्कृति से आकर्षित होकर विदेशी लोग यहां आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। जो यहां आने के लिए आकर्षित रहते हैं उन्हें कल्पना के अनुरूप स्वच्छता न मिलने पर निराशा होती है और देश विदेश की मुद्रा में एक बड़ी रकम से हम वंचित हो जाते हैं और विदेशी मुद्रा जो है वो भी नहीं आते। विदेशी लोग आते हैं तभी हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। स्वच्छता रखने हेतु न तो तख्ती लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए और न किसी को मना करने टोकने की। स्वप्रेरित भावना से जो कार्य हो सकता है वह दूसरे लोगों के कहने से नहीं होगा। लोगों के मन में अस्वच्छता के प्रति रुचि और स्वच्छता बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिले, वे जाने कि पहले स्वयं सफाई
1: प्रारंभ करना सीखें। इसके लिए एक संगठित क्रम भी चलाया जा सकता है। मोहल्ले के कुछ समाज सेवा की भावना वाले युवकों की टोली बना ले तथा एक एक दिन अलग अलग मोहल्लों में जाकर सार्वजनिक स्थलों की सफाई करें। इससे वहाँ के कुछ भावनाशील लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों को स्वयं भी लज्जा होगी कि अन्य लोग जब हमारे मोहल्ले की सफाई कर रहे हैं तब हम क्यों ना करें। इससे क्या होता है कि वे अपने मोहल्ले में भी सफाई से जुड़ जाएंगे। बच्चों में स्वच्छता की आदत प्राथमिक स्तर से ही डालना चाहिए। अपने घरों, छोटे विद्यालय में भी उन्हें अपने शरीर, कक्षा, पाठशाला, बगीचा, घर आदि की स्वच्छता का आदत बनाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा विद्यालय, हमारा घर, हमारे आसपास के क्षेत्र साफ होना चाहिए। शाला में बच्चों को कुछ टोलियों में बांटकर स्वच्छता की स्वस्थ स्पर्धा कायम की जा सकती है। कुछ मात्रा में इसके लिए अंक निर्धारित कर देने से वे अधिक आकर्षित हो सकते हैं। इससे दोहरा लाभ होगा, सफाई तो होगी ही, साथ ही कूड़े का सदुपयोग भी हो जाता है। इधर उधर फैला कूड़ा अस्वच्छता उत्पन्न करता है, उसे एकत्र कर सड़ाया जाए तो इससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है। इस खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत अंशों में बढ़ जाती है, क्योंकि यही उसका वास्तविक खाद है। वैज्ञानिकों के अनुसार कूड़ा हमारे आहार है, अतः उसे एकत्रित कर सड़ाए तथा काम में लाएं। जहाँ तहाँ फल और सब्जियों के छिलके तथा गुठलियों लोग प्रायः यत्र तत्र बिखेर देते हैं, यह आभास ही नहीं होता कि यह खाद बनकर हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अस्वच्छता अपनाने से जहाँ अपार हानि होती है, वहीं स्वच्छता अपनाने से अनेक लाभ भी होते हैं। अपनी आदतों को सुधार कर स्वच्छता से मिलने वाले लाभ की बात आप अपने घर, आसपास के लोगों में, बच्चों में भी आप

हम बातें करते हैं कुछ भी ज्ञान से संबंधित बातें स्वास्थ्य के लिए। मानव शरीर की जटिल और अद्भुत संरचना में किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण अंग की भूमिका निभाती है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने, रक्त को निरंतर फिल्टर कर अपशिष्ट वेस्ट पदार्थों को, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने, शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का सही संतुलन बनाए रखने तथा रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में इसकी भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है। इसके अलावा किडनी लाल रक्त कोशिकाओं

सीएस के निर्माण और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक हार्मोन्स का उत्पादन भी करती है। हालांकि आधुनिक दौर में बदलती जीवन शैली, अनियंत्रित खान पान, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव, उच्च रक्तचाप, IBP और डायबिटीज, मधुमेह के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का जोखिम अत्यधिक बढ़ गया है। दुर्भाग्यवश किडनी की बीमारियां अक्सर शुरुआती चरणों में कोई स्पष्ट या गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देती है। जब तक मरीज को समस्या का एहसास होता है, तब तक किडनी की कार्य क्षमता का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो चुका होता है। ऐसे में केवल बीमारी के गंभीर लक्षण दिखने पर इलाज कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समय पर सटीक जांच, विशेषज्ञों का सलाह भी मायने रखता है। शुरुआती संकेतों को पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी को कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। इसी प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं विवेक रंजन की वार्ता, पशु हमारे मित्र हैं।
1: हमारे मित्र हैं। आज से लगभग 130,000 वर्षों पूर्व मानव का विकास हुआ था। इसी प्रकार लगभग 40,000 वर्ष पूर्व उसने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। इसका प्रयोग वह खाना पकाने, गर्मी प्राप्त करने और हिंसक जानवरों को मार भगाने में करता था। फिर भी उसने कृषि करना भी सीख लिया और जानवरों का शिकार करने के स्थान पर उन्हें पालना सीख लिया। इस तरह मनुष्य और पशुओं की मित्रता की कहानी बहुत पुरानी है। संभव है मानव ने सबसे पहले कुत्ते से मित्रता प्रारंभ की और फिर दूसरे पशुओं जैसे गाय, बैल, घोड़े आदि को पालना प्रारंभ किया। ये पशु हमारे अच्छे मित्र हैं। इनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। अपने स्वामी के लिए वह अपने प्राण भी बलिदान कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखलाने आदि में कुत्ते अतुलनीय हैं। पुलिस के कुत्ते डाकुओं, आतंकवादियों, तस्करियों को पकड़ने में बड़े सहायक होते हैं। संकट में फंसे हुए लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है, परंतु यह एक सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है। इस बुद्धि का उपयोग मानव ने अपने विकास और समृद्धि के लिए बड़ी चतुराई से किया है। उसने पशुओं को पालकर उनसे काम लेना प्रारंभ किया है। चार्ल्स डार्विन ने मानव का विकास पशुओं और वानरों से माना है। इस तरह हमारा और पशुओं का संबंध बहुत पुराना और घनिष्ठ है। हिंदू धर्म में गणेश, हनुमान आदि महत्वपूर्ण देवता हैं। गणेश जी का सिर हाथी का है और हनुमान जी वानर हैं। रामायण में वानरों और ऋक्षों ने रामचंद्र जी को रावण को परास्त करने में बड़ी सहायता की थी। उनके इस सहयोग के बिना सीता को दुष्ट रावण की कैद से छुड़ाना असंभव था। गाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है हम लोग सभी जानते हैं। इससे हमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर आदि के अतिरिक्त गोबर, खाद, चमड़ा आदि मिलते हैं।
0: विवेक रंजन की वार्ता सुन रहे थे पशु हमारे मित्र, और चलते चलते हम डालते हैं एक नज़र इतिहास के पन्नों पर। 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया था। हिंदी में दिया गया पहला संबोधन था 1977 में, आज के दिन 4 अक्टूबर के दिन। 2000 की बात करें तो चांग चुन स्विंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने थे। 2002 में पाकिस्तान में शाहीन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया था। बाली बम कांड के दो संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे 2005 में। 2006 की बात करें तो जूलियस असांजे ने फेकलिक्स की स्थापना की थी। हम उन्हें याद कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। सरला अग्रवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल, इनका जन्म 1927 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ला 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, इनका जन्म 1884 में हुआ था। 1897 में श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक थे, इनका जन्म हुआ था। हम उन्हें याद कर लें जो आज के दिन हम सबों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कहा था। शक्ति सिन्हा भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे, इनका निधन आज के दिन 4 अक्टूबर 2001 को हुआ था। 2015 में इंदिरा नागेश्वर राव भारतीय फिल्म निर्देशक तथा निर्माता, इनका निधन हुआ था। भागवत झा आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ में से थे और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। भागवत झा आज़ाद, इनका निधन 2011 को हुआ।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का जोहार प्रणाम कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। दिन के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे।

0: बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैकड़ों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Loksabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as the chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. The Ministry of External Affairs has summoned the Charte d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. The 19th Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from the 7th to 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs, PM Setu, has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smith Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
4: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
3: Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to the great revolutionary and freedom fighter Shyamji Krishna Varma on the occasion of his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said, Shyamji Krishna Varma dedicated his entire life for the freedom of India. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Keralam, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from the remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and north interior Karnataka during the next 2 days. An earthquake of magnitude 5.9 struck Sumbawa region of Indonesia earlier this morning. According to the country's meteorological agency, the quake occurred at a depth of 10 kilometers. There were no reports of damage or injuries. And the Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put an impressive performance at this year's Games, securing the fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 7 bronze. And in men's cricket, India secured the 3-match ODI series against the West Indies 2-1, winning the first 2 matches before suffering a 5-wicket defeat in the final game in New Chandigarh last night. And that is the end of this news bulletin.

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी और बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सलगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी,
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं एक चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही, एक हद तक नहीं। आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी,
0: जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूँ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में,
1: जी
0: वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती
1: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होते ही थोड़ा सा
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज
1: हाँ,
0: है
1: वो एक वक्त के साथ आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना? लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
0: जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: जी।
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी प्रोफेशनल साजिश थी
0: जी,
1: कि भाई
0: जी,
1: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
0: बनानी है तो,
1: है तो। जी,
0: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
0: जी,
1: आ रहा
0: जी,
1: पर
0: जी, एक अलग रूप से जी पाती,
1: जी
0: संगीत
1: पाती
0: को,
1: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
0: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तु तु तु तु तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
1: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
0: जी?
1: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदा के नीचे, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
0: जी,
1: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
0: बिल्कुल,
1: मैं हमेशा उनकी थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
0: बहुत
1: वो बहुत जरूरी,
0: ये एक बड़ा मन ही ये बात
1: वो बहुत
0: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
1: कभी नहीं।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तू तू तू तू।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
1: जी।
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
0: दिस इज नॉट दी एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर। क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
1: सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तुतु तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: के
1: जी
0: मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम खरदुना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल
0: है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ,
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं,
0: खुद से
1: बिल्कुल
0: ये कह रही हूँ
1: जी,
0: आज,
1: बिल्कुल
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर,
1: अरे
0: शाम है धुआं
1: क्या
0: धुआं,
1: बात है, क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है,
1: माधुरी
0: क्लियर
1: जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती
1: हाँ, बिल्कुल
0: है। वो मैंने नोट किया
1: नोट की।
0: था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जानती हैं, डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप,
1: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है कि
1: हाँ,
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना, ये
1: क्या बात
0: किसी
1: है।
0: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ,
0: खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो
1: हूबहू,
0: एक्सप्रेशंस।
1: हाँ हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
0: हाँ
1: कितना
0: बाप
1: तो,
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है वो आदमी, इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना, वो सिर्फ, मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, छोड़िए।
1: जी
0: खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ,
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी,
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो IQ है, उसका जो
0: बहुत कम
1: है
0: है,
1: ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े। मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें
0: मेरा
1: तो यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज प्लीज
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज,
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
0: हर एक
1: आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ,
0: जी, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि
1: जी, जी,
0: मुझे वो गाना मिल जाता
1: नहीं,
0: उस
1: मैंने ये
0: गायिका
1: दुख
0: का।
1: कभी किया भी
0: जी
1: नहीं मंदा
0: जी
1: के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, तो वो तो जगत पिता है,
0: जी
1: जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल
1: हमारा
0: बिल्कुल।
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे
0: और
1: वो?
0: उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी,
0: बहुत
1: यहाँ
0: मुश्किल
1: सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, अभी भी गा रही हूँ।
0: जी,
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सही
1: आज
0: कहा आपने।
1: ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया,
0: जी
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझ्यात पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला,
0: वा
1: कुठला देव बाई पावला, जीवच गही वरला, उरात धड धड वाढली, ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा।
0: जी
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी
0: जी
1: ये 1 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। वो मुझे हमेशा बेटा, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना
0: गवा दी,
1: गवाएंगे।
0: क्या
1: तो ये
0: बात है।
1: कितनी बड़ी बात है, ये भाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता, गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
0: क्या हो
1: सकता है
0: सकता है।
1: मंदाकिनी जी।
0: जी बिल्कुल
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ,
0: बिल्कुल सही
1: है ना
0: कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले,
1: जी।
0: बताइए।
1: बचपन में जब सुषमा
0: हाँ
1: श्रेष्ठा के नाम
0: जी
1: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने,
0: जी
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती, झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर भिर भिरती।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो और
1: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज की उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ,
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता
0: हाँ
1: पड़ना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: ऊंची है बिल्डिंग, टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं, टाडा रा रा रा रा टा, आ जा आजा, बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: जी, अनु मलिक के साथ
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
0: जी।
1: पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है,

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचमदा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिन ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, हो मैं जानू, आई लव यू। वो ही सब देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं,
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनके सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है, एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलोगे कि अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है,
0: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा, तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
0: हो जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
0: जी।
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है।
1: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
1: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
0: वो सीखेगा कहां से आगे के लिए,
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार बन
1: जाना, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके

0: तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको
1: उनका भी करियर जो बनता
0: हर
1: है।
0: बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में है।
1: जी
0: है
1: एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए?
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
0: हकीया तो मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखिया तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिस लो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिस लो वलो व तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: पर आज का ये मौका मैं
1: नहीं,
0: गंवाना नहीं चाह
1: और
0: रही।
1: हम भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
1: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
0: जी।
1: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
1: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
0: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
1: बिल्कुल
0: पसंद करते।
1: बिल्कुल। और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
0: यही खास
1: स्टेज
0: है।
1: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
0: जी।
1: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
0: अच्छा।
1: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
0: जी,
1: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
1: प्लीज,
0: का।
1: चने के खेत में।
0: अरे।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजूषाएं खुलने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
1: हाँ।
0: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है।
1: हाँ।
0: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
1: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं।
0: जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: और रविंद्र जैन ने न केवल

0: ये फिल्मों में बल्कि कई हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी ये हिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविंद्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा
1: जी
0: और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर,
1: जी
0: वहां से रविंद्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविंद्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविंद्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविंद्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविंद्र जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे, जिन दिनों हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुने होती थी, लोक धुने थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा, और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी।
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
2: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
1: जी,
2: तो उसका कोई न कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
1: जी,
2: या फिर राम तेरी गंगा मैली का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
1: प्यार का सावन में, जी हाँ
2: जी हाँ प्यार का सावन में
1: जी,
2: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
1: जी,
2: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
1: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
2: जी,
1: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी तो उनसे, यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया।
2: जी हाँ जी हाँ।
1: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
2: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
1: संगीत भारतीयों के जीवन में, यानी हमारे जन्म से पहले से
2: जी
1: शुरू होता है, ठीक है ना
2: जी,
1: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है, तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है। और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
2: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुने, गाने की धुने पहले बना दी जाती हैं
1: जी,
2: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
1: जी,
2: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
1: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
2: जी,
1: गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
2: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में, साहित्य में, संगीत में?
1: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें नज़में नाज शरीफ हम इस तरह की चीजें हैं उसमें, हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
2: अनुवाद काम
1: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
2: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
1: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
2: जी,
1: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
2: बंगला पे उर्दू पे
1: जी, जी, जी, जी,
2: हिंदी
1: जी,
2: में कर ही रहे हैं
1: जी जी। हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
2: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
1: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदा जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
2: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
1: मगर संगीत किसी जुबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जुबान है,
2: अपनी भाषा होती है
1: जी।
2: तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
1: नहीं, सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए,
2: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती
1: जी। नहीं
2: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
1: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं, जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
2: जी
1: सीता माता को कि वे राम जी ने की भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

0: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
1: और जयंत जी,
0: जी
1: रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती हैं। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के ज़हनों दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।

0: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है, म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें। वो जबान सब मुल्कों की एक ही है जी। संगीत की जबान है वो, एक ही जबान है जी। अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
1: जी
0: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं।
1: जी
0: तो इससे अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
1: सही बात।
0: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
1: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोड क्यों ना बनाया
0: हाँ
1: जाए,
0: जी हाँ
1: यानी जो पाश्चात्य असर है। अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
0: थोड़ा
1: दिखाई देता
0: सा
1: है।
0: असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
1: जी
0: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहां पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
1: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
2: जी
1: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी, या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
2: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी,
1: जी
2: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफ़ी हेल्प, मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये
1: अच्छा,
2: है।
1: तो ये
2: वो
1: तो
2: तो
1: खैर
2: मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
1: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा। हाँ
2: नहीं,
1: जी हाँ जी
2: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह दीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हों, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो,
1: जी
2: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
1: जी जी एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीत नुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीत नुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता
0: ये तो देखिए, अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है।
1: है?
0: आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं चीज में, उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को 1 घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप 3 4 शेर होते हैं, 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है।
1: जी
0: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है।
1: जी
0: पहले हम दिल्ली जाते थे, 2 दिन में पहुंचे थे। आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे,
1: जी
0: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों,
1: जी
0: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों कलाम हो।
1: हाँ, अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसी
0: हाँ
1: है, ज्यादा
0: नहीं,
1: नहीं।
0: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी,
2: जी
1: गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही इस जुगलबंदी को, मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल
2: बिल्कुल
1: आपके सामने, या
2: रहता
1: किसी
2: है।
1: भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि
0: नहीं,
1: ये?
0: किसी भी
2: नहीं
0: गजल को
2: है
0: नहीं बांटते हम।
1: जी
0: एक तो जैसे जीता जी बोल रहे हैं अभी कि फीमेल एंगल
1: जी
0: शेयर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेयर में हो, जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
1: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर
0: हाँ,
1: कुछ?
0: एक तो देखिए मोनोटनी टूट जाती है,
1: जी
0: अगर एक ही आवाज़ आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में, तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
1: जी हाँ जी
0: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं हम

0: लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में तो 6,000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए 7,000 आदमी हॉल भरा हुआ। या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2,500 आदमी 2,000 आदमी। तो इस तरह की ऑडियंस चंडीगढ़ गए वहाँ 14,000 आदमी रोज गार्डन में तो गजल सुनने आए। वो पीछे 14,000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं। तो वहां पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहां फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
1: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर तो कैसा लगता है? यानी
0: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
2: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे। उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने। और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है, और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद।

0: अब इस वक्त मुझे रघुपति साहेब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ और आपसे क्या क्या सवालात करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
1: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में, और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं, फिर वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया, जो सदियों की अमानत है, जो हम सब की रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना अदीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अदीमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का

इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है। जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफ़ी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहाँ वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है। और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख मिचोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता। तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाबर्ज, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं। कि जी, मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है। लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इल्मी शायरी अलग होती है फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत ज़रूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूँगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूँ। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहा हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहाँ मलके आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्क्ड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो यक तरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास न फ्यूचर था न वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी
मैं

एमए कर रहा था अंग्रेजी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहाँ मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलम मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज्म भी गई थी, वो फूल फूल नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीजें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में मेरी हर खुशी में शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा और नाज से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है,
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनके रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का।
1: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन संपन्न समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई

बड़ा ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी हरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के गाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है जीरो से जोकर बनना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुल गया। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।